0: गुरु गोविंद सिंह महाराज जी नूं पछाणे। इस फुलवाड़ी ते अज तो कोई साल पहले आईब्रो दा जोर सी, अज गुरु ने कृपा की थी कि 5% 2% शायद रह गया होवे, बाकी बख्शिश।
1: तीजा हक हुंदा सेवा दा, ओ भी खालसा जिहड़ा किसे दा सेवा दा हक नहीं खांदा, हक सतनाम ओनू दास डिटेल नहीं सांझा कर सकेगा। कई बारी ना खुशी इन्नी हो जांदी कि भुख ही नहीं लगदी। अज ओ खुशी हो गई है कि अज बंदा कहिंदा हुण असली कीर्तन हो गया। एक कीर्तन हुंदा उपदेश देना, एक कीर्तन उपदेश मन लिया, आप सतनाम आओ जी बड़े प्यार।

बिना सिमरन तो तेरा जीवन किसे भी लेखे नहीं। सेवा और सिमरन तो बिना इस तरह जीवन है, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास कहंदे हन, त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल करनी।

उसने इस शरीर नू सुंघिया ते वापस चला गया। क्योंकि कई दिनों तो भुखा सी बुग्याड़, फिर आया हाथ सुंघे मस्तक सुंघिया पैर सुंघे ते फिर वापस तुर गया। कीर्तन की समाप्ति हुई, धन गुरु नानक पातशाह बिरती तो उथान होए, मर्दाने ने बेनती की गरीब नवाज सच्चे पातशाह आ मृतक शरीर पिया है, बाघ ने पहला आके इस नूं सुंघिया चला गया, फिर इसका मस्तक सुंघिया हाथ सुंघे कदम सुंघे फिर वापस चला गया। जापदा सी कई दिनों तो भुखा है, पर उसने अपनी खुराक वेख के इस नूं भक्षण क्यों नहीं कीता? धन गुरु नानक पातशाह कहणगे, मरदानिया आ कीर्तन दी रब्बी बाणी दी आवाज इसके कन्ना तक पहुंची है और इसका मन निर्मल हो गया, हिरदा स्वच्छ हो गया। इसने जिस मृतक शरीर नूं सुंघिया ना, इसलिए सुंघिया कि इसने कोई चंगा कर्म भी कीता लेकिन कोई नहीं कीता। फिर मन विच आया, हो सकता है कदे अपने गुरु अगे इसने शीश निवाया होवे, शीश सुंघिया हो सकता है इसने कदी सेवा करके अपने हाथ सफल कीते होन, हो सकता है कदी इसने कदम सतगुरां वल गए होन, गुरु वल गए होन। पर मर्दानिया इसने कदम सदा माड़े पासे जांदे ने, इसने हाथ सेवा तो बिना इसका मस्तक कदे गुरु दे चरणा ते नहीं चुकिया, जिस करके बग्याड़ नू ज्ञान हो गया कि जे मैं इस पुरुष दा मांस खा लिया तो मैं भी कुंभी नरक दा भागी बन जावांगा। सो प्यारी सात संगत, मनुष्या जन्म उन्हां दा ही सफल है जिन्हां ने भाई सेवा और सिमरन

0: भरण सके महिमान जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी एक मन पुरख ते आए बरदाता संत सहार सदा बखियाता तास चरण लेर दै बसावो तौ परम गुरु नानक गुण गाओ तास चरण लेर दै बसावो तौ परम गुरु नानक गुण गावो सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत समूह माई पाई गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ अजी कहिंदे हन जिस नूं किसे कम दा चज ना होवे तरीका ना होवे जीवन दा ढंग ना आउंदा होवे गुरु की मर्यादा विच चलण तों प्रतिकूल जिहड़ा इंसान है उस दा नाम कुछ अजी भाव खोटे औगुणा नाल भरी होई ते शुभ गुणा तों खाली मंज कहिंदे हन मैनू हे वाहिगुरु मैं तां मंज
1: मंज कुचजी अमावन डोसड़े
0: मैं कुचजी हां मैनू मत नहीं है मैनू अकल नहीं है जिवें भाई गुरदास जी लिखदे हन हौं अपराधी गुणे गार हौं बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हौं पर घर जो हंदा इस शब्द विच वी औगुण गिणे हन के इना वीआं औगुणा दे मैं संयुक्त हां हे प्रभु मेरे ते दयालता करो इना औगुणा तो मैनू बचा लवो हौं अपराधी गुनहगार हां बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हां पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास घाती आ किरत कण मैं को नरखंदा सिमर मुरीदा ढड